सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न ₹70 अर्ब विनियोजन गरेको छु। हेटौडा ढल्केबर इनोरुवा 400 केवी प्रसारण लाइन चालू आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेछ। 400 केवी का नयाँ खिरी न्यू दमौली न्यू बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेछौ। अन्तर्देशीय तर्फ बुटवल गोरखपुर र इनोरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेछौ। ढल्केबर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी लम्की दोदोधरा बरेली लमही लखनऊ निजगढ़ मोतिहारी र चिली